0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410। Sahul Travel, at all protected.
1: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
2: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Like a Radio.
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Like a Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@likeamedia.co.uk.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Like a Radio.

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंच मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले।

तेरे भगत रसाले थोर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

जोर ना जुगति छुटाए संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए।

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
3: जगदात्री,
2: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
3: माला ले आना। लाया जी।
2: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
4: टीम, get ready for the action।
2: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
5: ये है लाइका गोल्ड।

0: यस लता जी और रफी साहब की आवाजों में मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत।
1: कुछ कहता है
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक, और उससे पहले भी आपने हीरो फिल्म का गीत सुना कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि गब्बर सिंह ने भी कहा है कि जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह ये कह कर गया। इसलिए प्यार में डरना नहीं है, बिंदास जी भर के प्यार करना है अगर आपको किसी से है तो। और चलिए इसी प्यार भरी बातों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा संडे के दिन एक बार फिर से आपके साथ है। 1 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, और कल रात को एक अच्छी नींद लेकर चुके हैं। क्योंकि कल मौसम अच्छा था, अच्छे से नींद आई, ठंडक थी थोड़ी सी, वरना उससे पहले तो बस मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो आज भी मौसम अच्छा है, शानदार है, और आज हमें कुछ बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो बस मौसम को एंजॉय कीजिए, और यहाँ से बजने वाले गीतों को भी याद रखिए, एक नहीं दो नहीं ढेर सारे बॉलीवुड क्लासिक्स सुनवाऊंगी मैं आपको।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये 1 pound आपको देगा 124.2 भारतीय रुपए, और हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाई एस बी आई ब्रांच ऑनलाइन बाई यूजिंग दी योनो एस बी आई यू के मोबाइल ऐप। और याद रखिए इस महीने के एंड तक, यानी कि होने ही वाला है, आप 75 pounds का गिफ्ट वाउचर हर दिन जीत सकते हैं जब आप ट्रांसफर कराते हैं 1000 pounds, और आप 1 gram गोल्ड कॉइन भी जीत सकते हैं जब आप ट्रांसफर कराते हैं ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Leica Radio.
4: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज कोलंबिया और पोर्चुगल के बीच में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मैच है, और उसके अलावा एक और मैच है जो साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच में खेला जाएगा। तो मैच तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ याद दिला दें कि भूलिएगा नहीं अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: ये है
4: Leica Radio.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Welcome to the jungle.
2: Film? Bilkul fake.
1: Hamari film army wali.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
6: मैं किस लिए फिल्म में?
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
11: OMG!
10: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
11: Murder Mystery!
10: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. MKDW.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
12: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
9: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
12: Exclusive radio partner, Live. Radio.
13: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
14: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज. कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलिडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
15: जीटीवी एचडी पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
16: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
17: खुद से भी ज्यादा.
15: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
17: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
15: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे जीटीवी एचडी पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई क्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394. जी टीवी एचडी पर देखिए एक नई कहानी.
18: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
15: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
18: दिल तो टूट पे गया
15: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
19: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
15: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे जी टीवी एचडी पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
12: Miss your favorite show on Laika Radio Midlands? You can now listen back at laikaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to laikaradio.com and the Laika Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Laika Radio Midlands when you want. Laika Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Laika Group. Home of Laika Radio and Laika Gold.
20: Laika Radio.
9: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
12: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune in details at leicagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

किशोरदा की आवाज में कालिया फिल्म से था ये गाना, जो एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी अमिताभ बच्चन की। और इस फिल्म के गाने ही नहीं पॉपुलर थे, इस फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। और आपने सुना होगा वो डायलॉग अमिताभ बच्चन की आवाज में कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस तरह के और भी डायलॉग जो अमिताभ बच्चन ने बोले हैं, एक डायलॉग उनमें से था जो इस फिल्म से लिया गया था। और आर डी बर्मन का म्यूजिक कमाल धमाल बेमिसाल, जिसे आप सबने पसंद किया। और मुझे पता था, मैं जानती थी कि ये गाना

0: Gulab Jamun, Rasmalai, Motichur Laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: ye hai Laika Radio.
2: चलिए फिर आपके धन्यवाद का थैंक यू का सिलसिला शुरू करते हैं। ढेरों मैसेजेस मिले हैं मुझे हमेशा की तरह, लेकिन आंटी जी मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ। अंकल जी को पता है कि आप अमिताभ बच्चन की इतनी बड़ी फैन हैं? अगर पता है तो ठीक है, कहीं मुश्किल ना हो जाए, मैं जस्ट ये जानना चाह रही थी। एनीवेज, दिव्या जी हैरो से हमारे साथ है, बेल्जियम से प्रीति है, एस एस भोगल जी हमारे साथ है, हमारे राजेश जी थैंक यू साथ देने के लिए कहते हैं कि आजकल हम बहुत ही चरम मौसम का अनुभव कर रहे हैं और भविष्य में गर्मी और बढ़ सकती है, और ये बढ़ रही है। आप देखिए हर साल एक एक दो दो डिग्री टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इंसानों का, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, जानवरों का क्या होगा? मुझे लगता है जो जितना स्ट्रांग होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी का हाल वैसे ही होगा जैसे हजारों साल पहले डायनासोर का हुआ। एनीवेज आगे बढ़ जाते, अच्छी बातें करते हैं। मिथुन पटेल जी थैंक यू आपके मैसेज के लिए। हरीश रुदा जी कहते हैं हमें गाने अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अर्जुन जी, मृदु जी, हंसा जी, वियाना में अनिल सोनी जी, क्रॉयटन में महेंद्र जी, टोरंटो में हमारे उल्लास जी, थैंक यू मालती जी, आप कह रही हैं कि मैं आपका साथ दूंगी और गीतों को एंजॉय करने के लिए, तो बस कोशिश करूंगी कि गाने अच्छे बजाऊं जिससे आपका संडे का ही जो मॉर्निंग के तीन घंटे बहुत अच्छे बीते, थैंक यू हिमांशु पटेल जी। और एक मैसेज आया है, हिमांशु पटेल जी ने भेजा है, डेडिकेशन है, कहते हैं जय श्री कृष्णा ऋतु शर्मा, आप चाहते हैं कि डॉक्टर निशा जी की बर्थडे को हम और भी अच्छी बना दें, जो कि आपकी नीस है, अपनी पसंद की गीतों के साथ, वाह क्या बात है। तो डॉक्टर निशा को हिमांशु पटेल जी एंड पूरी पटेल फैमिली की ओर से जन्मदिन की ढेरों ढेरों ढेरों बधाइयां, और अगला गाना जो है मुकेश जी की आवाज में वो डॉक्टर निशा आपको ही जाता है, लेकिन उससे पहले जल्दी से थैंक यू कहते चले सुरजीत जी को, तोची जी को, प्रज्ञा जी को, शेखर जी को, एंड ऑफकोर्स हमारी मिसेस शेख। चलिए ये गाना डॉक्टर निशा के साथ साथ आप सब के लिए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जी हाँ, मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि जो आपको हो पसंद वही गाने बजाएंगे ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। और मुझे पता था कि ये गाना मुकेश जी की आवाज में सुनते ही हमारी मीना जी मैसेज डालेंगी। मीना लखानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। एंड सुमन बद्रेसा जी का कहना है कि ऋतु ये गाना मेरे नाम कीजिए। बिल्कुल आपके नाम पर गया। नरेंद्र बागिया जी, थैंक यू, आज भी आप हमारे लिए चार लाइनें लिखकर लाए हैं। कहते हैं, अर्ज किया है, दोस्ती ना कभी इम्तिहान लेती है ना कभी इम्तिहान देती है, दोस्ती तो वो है बारिश में भीगे चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेती है। ओह माय गॉड, दैट्स सो नाइस, थैंक यू साथ देने के लिए नरेंद्र जी। एंड रोशनी, आप आई, बाहर आई, आज बहुत रोशनी है, बहुत अच्छा मौसम है, सो थैंक यू, स्वागत है आपका भी। एंड विजय गुनोवा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। एंड भरत गंगाराम जी, गर्मा गर्म गुड मॉर्निंग, आज मौसम बेहतर है, तो आई एम श्योर आप सब हमारा साथ दे रहे, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, तो बस साथ देते ही रहिए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में सुनवाऊंगी जोड़ी नंबर वन, और आज की जोड़ी नंबर वन कौन सी है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: ये है Leica Radio. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो भाई हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो Southall Travel को याद रखिए, और दुबई के लिए उनकी बहुत अच्छी डील्स हैं, क्योंकि दुबई में जाने के लिए अब रेस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं, तो आप जरूर टिकट्स बुक कराइए। उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर, और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Ritu Sharma.
3: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
4: This July, witness the rise of a new force.
3: Hi boys.
5: What's up?
4: Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
3: Jisse tumse baat karni hai. Rok lo.
4: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal. Don't miss India's biggest female-led action event. Alpha, in cinemas from the 3rd of July.
6: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click riffcotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
7: Radio partner Leica Radio.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: 105 shows pura karya pachi. Have Lester ma avi rahyu chhe. Ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
11: Jazz entertainment line avi rahya chhe. Sakhna re jo husband ji.
10: Leena Shah ane Samir Shah saate. Hasiyano full dose. 28 June. People Center Lester ma. Be shandar shows. Bapore adivage ane sanje saatwage. Tickets booking. माटे कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk सकना रह जो हस्बैंड जी
12: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
13: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
12: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: You're both on the same road.
5: Same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
14: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
15: Punjab, the biggest tunes.

0: राजेश खन्ना और मुमताज की सुपरहिट फिल्म आपकी कसम से था ये गाना, और उससे पहले आपने राजेश खन्ना की कमबैक फिल्म का गीत सुना जो थी सौतन। और लीजिए, इन दो बैक टू बैक गीतों के साथ प्रोग्राम का सेकंड आवर शुरू हो गया है और आज आप सुनते हैं जोड़ी नंबर वन। और आज की हमारी जोड़ी है महेंद्र कपूर और लता जी की जोड़ी, जिन्होंने बहुत ज्यादा गीत नहीं गाए हैं। महेंद्र कपूर के साथ आशा जी के गाने बहुत ज्यादा है, लेकिन आज मैं आपको लता जी के गीत सुनाने वाली हूँ। वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन आशा जी के मुझे लगता है ज्यादा हैं। बट देखते हैं आज कौन से गाने बजने वाले हैं, क्योंकि दो गाने सुनवाऊंगी। और जब भी लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का नाम सामने आता है तो मुझे सबसे पहले एक ही गाना दिमाग में आता है। आज मैं सोच रही थी कुछ और गाने आपको सुनवाऊं, लेकिन वो गाना उन सभी गानों पे हावी रहा, इसलिए आज मैंने वो गाना चुना है और आज फिर से सुनवाऊंगी। बजेगा आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 124.2 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह कराना होगा ब्रांच जाकर या फिर योनो ऐप के थ्रू या फिर ऑनलाइन। और आप जून के एंड होने से पहले, जिसमें दो दिन बचे हैं, 75 पाउंड का वाउचर जीत सकते हैं। हर रोज जब आप 1000 पाउंड से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, या फिर आप 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक जीत सकते हैं जब आप 2000 पाउंड से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज मैच होने वाला है कोलंबिया और पोर्चुगल के बीच में, और दूसरा मैच होगा साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच में। लेकिन आपको याद दिला दें कि आप भूलिएगा मत अपनी 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस लेना हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो के साथ, और ये सब होगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, Falcon Cash and Carry,
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
6: This July, witness the rise of a new force.
5: Hi boys.
3: What's up?
6: Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shadvari in a high-octane action spectacle, alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
5: Jisse tumse baat karni hai, rok lo.
6: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal.
7: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
6: Don't miss India's biggest female-led action event.
7: India Alpha से डरेगा.
6: Alpha in cinemas from the 3rd of July.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410। साफो Travel at all protected.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Be part of a historic grand opening.
12: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
11: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
12: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
11: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
14: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
14: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
1: New hits on Leica Radio.

0: क्या ढोलक बजाई है, एंड की जो बिट थी उसमें क्या शानदार ढोलक बनाई है, बजाई है, जिसने भी बजाई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जब कोई गाना बजता है तो उसमें कितने सारे म्यूजिशियंस होते हैं, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं और जिनसे गाने की खूबसूरती निखर कर आती है, लेकिन हमें सिर्फ सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम याद रहता है, बाकी लोगों का तो हमें नाम भी पता नहीं रहता जिनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन गीतों को खूबसूरत बनाने में। तो आज उन सब के लिए बैठकर जोर से तालियां बजा दीजिए। इस ढोलक को सुनकर तो मुझे इतना मजा आया कि मैं सोच रही थी कि हाय, ढोलक जो होती है ना, तबला जो होता है ना, गाने की शान होती है और इसके बिना गाना बिल्कुल समझ लीजिए फीका है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो लीजिए, हमने ये गाना जे ओम प्रकाश की फिल्म आए दिन बाहर कैसे लिया था, जिसमें धर्मेंद्र थे और साथ में थी आशा पारिक, और आप सुन रहे हैं जोड़ी नंबर वन। आज ये महेंद्र कपूर और लता जी के गाने सुनवा रही हूँ जोड़ी नंबर वन में, और इस गाने को सुनकर हमारी किरण जी के चेहरे पर स्माइल आ गई है। क्यों मुस्कुरा रही है, कारण भी तो बताइए, क्या कुछ पुरानी यादें जुड़ी हैं इससे आपकी? लेकिन चलिए, थैंक यू साथ देने के लिए। प्रीति, आपको ये गीत पसंद है और रानी कहती है कि बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, मैं वॉक कर रही हूँ और आपका शो सुन रही हूँ। तो रानी जी, मैं भी यही करती हूँ, जब मैं वॉक पर जाती हूँ ना तो मैं भी अपना ही शो सुनती हूँ लिसन बैक पर जाकर, क्योंकि उसमें मेरी पसंद के गाने होते हैं। तो आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू वरिता जी, आपका मैसेज मिला है। संध्या भावसर, थैंक यू। हरिश्रुदास, थैंक यू। और महेश जी कहते हैं, क्या बात है ऋतु, दो दिन से आप राजेश खन्ना के गाने बहुत बजा रही हो। तो महेश जी, कोई खास बात नहीं है, वो क्या है कि जब मैं प्लेलिस्ट देखती हूँ ना, तो मुझे अगर कोई भी गाना है जो कुछ दिन से नहीं बजा होता, बस मैं पकड़ कर बजा देती हूँ। ऐसी कोई खास

0: तो बिल्कुल ये थे हमारे जोड़ी नंबर वन के दो गाने। आज महेंद्र कपूर और लता जी को बनाया जोड़ी नंबर वन, जो ऑलरेडी जोड़ी नंबर वन है। और आपके ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। शरफून कहती है कि आज गार्डनिंग का दिन है, कुछ नए प्लांट्स लेकर आई हैं और उन्हें पॉट में डाल रही हैं। तो बिल्कुल ये सही मौसम है, क्योंकि गार्डन में अगर फूल खिले हों गुलशन गुलशन तो बहुत अच्छा लगता है, आंखों को बड़ा सुकून मिलता है देखकर। तो बस करते रहिए और आप हमारा साथ दे रही हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। जैस्मीन स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र पांचाल जी कहते हैं कि मैंने तो ढोलक वाले के लिए और सभी साज बजाने वालों के लिए तालियां बजा दी हैं। तो जो नहीं जानते उनको बता दूं कि हमारे नरेंद्र पांचाल जी भी बहुत सारी चीजें बजाते हैं, और जब भी कोई लाइव शो होता है उसमें मैंने आपको कई बार सुना है, और आप जो चीजें बजाते हैं उससे एक अलग ही मजा हो जाता है गाने में, एक अलग ही उस पर पहुंच जाता है गाना। क्या कहूं, शब्द नहीं मिल रहा। सो थैंक यू साथ देने के लिए। और बस अब क्या करें, महेंद्र कपूर की बात हुई थी तो एक और गाना जो उनकी आवाज़ में बहुत पॉपुलर है, या कह दूं अमर है, और बहुत दिन से नहीं बजाया, तो चलिए आज दिल कर रहा है उस गाने को सुनवाने का। सुनवाती हूं आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Leica Extra Podcast Update.
0: तो आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट हमेशा सुन रहे हैं, और इस बार नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है जिसका टाइटल है ट्रेडिशंस एंड टाबूज, और इसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। और याद दिला दें कि ये हमारा जो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट है वो अवेलेबल है सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पर, आप उसे स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजन पर जाकर सुन सकते हैं।
2: लाइका एक्स्ट्रा।

0: अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म लव स्टोरी से था ये गाना, जिसे राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च करने के लिए बनाया था। आरी बर्मन का म्यूजिक, और उससे पहले आपने सुना गीत गजब फिल्म का, जो गजब की फिल्म है। मैंने इस फिल्म को देखा है, धर्मेंद्र और रेखा की फिल्म है। कहानी बहुत सुंदर है और कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो आंखों में आंसू ले आते हैं। उसी फिल्म से लिया था वो गाना, जिसमें म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और लीजिए, बैक टू बैक दो गीतों के साथ प्रोग्राम की लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपने बहुत सारे गाने मिस कर दिए हैं, लेकिन फिकर नॉट, लिसन बैक पर सुना जा सकता है, और वो कैसे मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल समय है आज के 3 वर्ड्स गेम को शुरू करने का, तो तैयार है? जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि ये जो 3 वर्ड्स होते हैं वो बॉलीवुड के किसी एक गाने से मैं लेती हूं, और उन 3 वर्ड्स की मदद से आपको गाना पहचानना होता है। तो आज के जो 3 वर्ड्स हैं, पहला है पैमाना, दूसरा वर्ड है दीवाना, और तीसरा है नजराना। 1970 में आई थी ये फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और मोहम्मद रफी साहब की आवाज है। कौन सा है ये गाना? वर्ड मैं रिपीट करती हूं, पहला वर्ड है पैमाना, दूसरा वर्ड है दीवाना, और तीसरा वर्ड है नजराना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, 1970 की फिल्म है और रफी साहब की आवाज है। अगर आपको पता चल गया है कि ये कौन सा गाना है तो फटाफट अपना मैसेज आंसर लिखकर पहुंचाइए हम तक इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.2 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ट्रांसफर करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. और इस मंथ के पहले पहले अगर आप ट्रांसफर करवाते हैं तो आप 75 pound का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे वेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds. Terms and conditions भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Yeah.
1: Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street, LE1-2JU, या Rowlett Hill, LE5-4UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Welcome to the jungle.
7: Film, बिल्कुल fake.
6: हमारे film army वाली.
8: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
7: Danger, एकदम real, और survival skills zero.
6: और star cast है.
7: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
9: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
7: वॉच वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास नाउ।
10: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
11: किस लिए फिल्म में?
7: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-396-35757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
2: In Dubai.
10: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
11: OMG!
10: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
11: Murder Mystery!
10: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. MKDW.co.uk. Exclusive radio partner, Lyco Radio.
12: Nun Eaton, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
13: Teachers, tutors or educators ke liye ek special opportunity. RoboThink UK expand kar raha hai. Become a confirmed franchise partner and receive a robotics kit package worth over £7,500. Parents can also save 10% off on full-week summer camps with code LAIKA10. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA.
14: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
15: You know how fans shout at football matches?
16: Oh, wake up!
15: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: बप्पी लहरी के म्यूजिक पर तोहफा फिल्म का था ये गाना, और ये गाना जितेंद्र पर पिक्चराइज था क्योंकि जितेंद्र ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: और हमारे कुछ साथी चाहते हैं कि थ्री वर्ड्स मैं फिर से रिपीट कर दूं, तो बता देती हूं जल्दी से। पहला वर्ड है पैमाना, दूसरा वर्ड है दीवाना और तीसरा वर्ड है नजराना। 1970 की फिल्म है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और रफी साहब की आवाज है। कौन सा है ये गाना? बहुत सारे साथियों ने पहचान लिया है, ऑलरेडी मुस्तक मैसेज भिजवा चुके हैं और वो कौन है उनका नाम जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल शुरू होगा आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और सुनवाते हैं आपको पहला गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: वैसे फिलहाल तो इस भीगी भीगी फिजा का हम सभी को भी इंतजार है, लेकिन आपने इस गीत को पसंद किया है। ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना, जिसे लिया था फिल्म अनुपमा से, म्यूजिक बाय हेमंत कुमार और आवाज आशा भोसले की। और चलिए अब सुनवाते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गीत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और अब समय आ गया है साथियों के नाम लेने का, यानी कि जिन्होंने सही सही गाने को पहचान लिया है। तो मैं बताती हूँ कि किन्होंने आज सही जवाब दिया है, लेकिन उससे पहले ये जरूर बता दूं।
1: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
0: अगर आप हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो जरूर अपने टिकट्स बुक कराइए साउथ ओल्ड ट्रेवल से। आज ही कांटेक्ट कीजिए उन्हें, फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, और ये सब बिल्कुल एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
1: Breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk.
0: तो आज के जो हमारे थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना है उसे सबने पहचाना है। तृप्ति जी आपका आंसर सबसे पहले मिला है, बिल्कुल सही है। शरफून योर आंसर इज करेक्ट टू। अल उल्लास, मीना शाह, वत्सला जी, रजनीश, गुरशरण, दिव्या जी, हैरोसे, करसन पिंडोरिया जी, फरीदा गुलाम अली, नीलेश तन्ना, एस एस भोगल, अर्जुन जी, मनीषा शाह, रानी सोहानी, फरीद हुसैन, अयूब चौहान, सहर, प्रीति जी बेल्जियम वाली, और हमारे दिनेश पोपट जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने। और किरण जी हैरो से आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा भारती दीदी आपको दोनों ही गीत बहुत पसंद आए हैं, ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स एंड थैंक यू किरण जी, बहुत धन्यवाद। अयूब चौहान जी कहते हैं कि मैं सुबह से आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत मजा आया। सहर योर आंसर इज करेक्ट टू। थैंक यू फरीद हुसैन जी, आप भी शो को एंजॉय कर रहे हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए। और चलिए बस थोड़ी ही देर में सुनवाती हूँ जो है आज के हमारे थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे लिया है मैंने फिल्म आन मिलो सजना से। बजता है थोड़ी ही देर में।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Like a radio.
2: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
3: Jay's Entertainment laine avi rahya che Sakhnare Jo Hasband ji.
2: Leena Shah ane Samir Shah sathe hasiyano full dose. 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B 07860-280-655, Mumbai Sandwich Station 07834832249, Athwa eventbrite.co.uk. Sakhna rahe jo, Hasband ji.

लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: ट्रैवल मंत्रा। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रैवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रैवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रैवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: गुड आफ्टरनून। आपने दो बैक टू बैक गाने सुने और उम्मीद करती हूँ दोनों गीतों को खूब इंजॉय भी किया। पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म हैना और दूसरा गीत था फिल्म गुलामी का। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल गेट वेल सून। If you're feeling a bit down, तो come on, cheer up. Life is to live, life is to enjoy. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए ये गाने तो चुन चुन कर लाती है सरिता आप ही के लिए। जहां भी बैठे सुन रहे हैं, लंदन में है, मिडलैंड्स में है, मैनचेस्टर में है, जहां भी हैं आप, मुझे उम्मीद है कि लाउड एंड क्लियर ये आवाज आप सब तक पहुंच रही है। नेक्स्ट 3 आवर्स हमारे और आपकी मुलाकात के हैं और इस मुलाकात को हसीन बनाने के लिए मैंने चुन चुन कर आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है। उम्मीद करती हूँ इन गीतों को आप पसंद करेंगे। राइट हैना और गुलामी, ये दोनों गीत मैंने क्यों शामिल किए। पहली बात तो ये कि ये दोनों फिल्में आज ही के दिन रिलीज हुई थी। हैना वॉज रिलीज ऑन 28th of June इन 1991। रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था इसकी स्टोरी को हसीना मोइन एंड जितेंद्र जैन के साथ मिलकर। This was produced by Randhir Kapoor and Rajiv Kapoor, starring Rishi Kapoor, Zeba Bakhtiar and Ashwini Bhave. And इसमें जो narration थी film के अंदर वो शम्मी कपूर साहब की आवाज़ थी। Music था रविंद्र जैन का। उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया। सभी गाने इस फिल्म के वैसे बहुत खूबसूरत थे लेकिन मैंने चुना था इस गीत को। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। ये भी बता दूँ कि मैं हूँ खुश रंगे हिना was listed 7 नंबर 7 ऑन बिना का गीतमालाज एनुअल लिस्ट इन 1991। गुलामी वॉज अनदर फिल्म जेपी दत्ता साहब ने बनाई थी। ये फिल्म स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्टोरी सब कुछ जेपी दत्ता साहब की थी। एंड इस फिल्म में काम किया था धर्मेंद्र जी ने, मिथुन चक्रवर्ती थे, कुलभूषण घरबंदा, स्मिता पाटिल, रीना रॉय, अनीता राज, रजा मुराद और भी बहुत सारे स्टार्स थे। एंड इसमें जो नरेशन थी वो थी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और ये खूबसूरत से गीत लिखे थे गुलजार साहब ने। जी हाँ, गुलजार साहब ने गीत लिखे थे। एंड ये गाना ख़ास तौर पर जो मैंने प्रोग्राम में शामिल किया, इसे गाया था लता जी एंड शब्बीर कुमार ने और ये गाना काफ़ी मशहूर भी हुआ। और अब जो मेरे साथी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं क्या कॉमन है आज के गीतों में, तो आज के प्रोग्राम के इस आवर में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन यही है कि ये फिल्में आजकल में ही रिलीज हुई हैं। तो अगला कौन सा गीत आ रहा है, किस फिल्म से है, ये मैं बता देती हूँ। कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे बहारों के सपने फिल्म का गीत। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि बहारों के सपने का कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद आएगा। आजा पिया तो ही प्यार दूं या फिर चुनरी संभाल कोरी, याद है ये गाना, बड़ा अरसा हो गया है मैंने इसे प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। अगर आपने हाल ही में सुना है तो वो और बात है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई भी गीत सुनना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आप इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 125 rupees and 20 paisa। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया एस बी आई योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे वेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
4: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: राइट भी आजकल फीफा के चल रहे हैं ये जो मैचेस चल रहे हैं फुटबॉल के, उसके बारे में बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ग्रुप जे का जॉर्डन एंड अर्जेंटीनिया के बीच मैच हुआ, अर्जेंटीनिया 1-3 एंड ग्रुप के का डीआर कांगो और उज्बेकिस्तान के बीच में मैच था, 3-1 से जीते एंड कोलंबिया एंड पोर्चुगल के बीच में मैच हुआ आज और दोनों नील 1-1 था। एंड रात को मैच होने वाला है, 8 बजे शुरू होगा साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच मैच एंड आज ही होगा अल्जीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो चुका है, ये 3-3 से ये मैच ड्रॉ हुआ। और अब ये भी बता दें कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Sarita Sabharwal.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: सुबहारों की सपने फिल्म से गीत आपने सुना और आवाज़ें थी मन्ना डे साहब की. और मन्ना डे साहब का साथ किसने दिया था, क्या आपने आवाज़ पहचानी थी या नहीं? एक ही तो आवाज़ है जो एकदम दिल में उतरती है, वो है लता जी की आवाज़. और अब मैं शबीर कुमार और लता जी की आवाज़ों में गाया हुआ वो सात दिन फिल्म का गीत सुनवाने जा रही हूँ. ये फिल्म 23 जून को रिलीज़ हुई थी इन 1983, जिसमें अनिल कपूर थे, पद्मिनी कोल्हापुरी थी एंड और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे. बहुत खूबसूरत फिल्म थी एंड सभी ने बहुत पसंद भी किया था इस फिल्म को. बापू थे डायरेक्टर इस फिल्म के एंड रिटन बाय जैनेन्द्र जैन, उन्होंने डायलॉग्स भी लिखे थे. इस फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एंड आनंद बख्शी साहब के लिखे गीत. और ये गीत आप तक कौन पहुंचा रहे हैं ये भी मैं बता देती हूँ. ये हैं
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोकोनट.

0: कुमार सानू एंड साधना सरगम की आवाजें आपने सुनी। गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म आर्मी। ये फिल्म भी रिलीज हुई थी आज ही के दिन इन 1996 और इस फिल्म को बनाया था और डायरेक्ट किया था राम शेट्टी ने, मुकुल आनंद ने प्रोड्यूस किया था एंड नितिन मनमोहन जी ने, एंड इसमें काम किया था श्रीदेवी, शाहरुख खान, डैनी डेंसन गप्पा, सुदेश बैरी और भी बहुत से आर्टिस्ट थे, लाइक रोनित रॉय भी थे, मोनीश बहल भी थे इस फिल्म में। एंड इस फिल्म का संगीत तैयार किया था आनंद मिलन ने। उम्मीद करती हूँ गीत आपने इंजॉय किया। और अब एक और ऐसा गीत जो 23rd ऑफ जून को या फिर 24th ऑफ जून को रिलीज हुई थी ये फिल्म, आइए पहले तो सुन ले जरा ये वाले मैसेजेस।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
3: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry.
2: Samara Black Tea, 1 kg, 3.99. Elephant Medium Atta, 25 kg, 14.99. Falcon Brown Sugar, 3 kg, 3.99. Leila Basmati Rice, 10 kg, 11.99. Suhana Khaman Dhokla, 500 gram, 1.99. Falcon Red Lentils, 1.5 kg, 24.399. Parle Ji Multipack Biscuit 799 gram 199. Falcon Lemon Juice 250 ml 3 for 1. Falcon Cash and Carry
3: 82 Assistant Street LE12JU ya Rowlatt Hill LE54UN.
2: Big deals, big savings while stocks last.
4: Welcome to the jungle.
2: Film bilkul fake.
4: Hamare film army wali.
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
4: स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
7: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
8: किस लिए फिल्म में?
9: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Khakra Crunch Bhakri Munch. Chikki Sweet. Papad Beet. Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
13: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
12: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
14: Hey!

0: आशा भोसले, शबीर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाजें आपने सुनी इस गीत में, जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म खुली, एंड 1983 में आई थी ये फिल्म। और प्रोग्राम के इस आवर का आगाज हुआ फिल्म अनमोल के गीत के साथ, जो 1993 की फिल्म थी। अनमोल फिल्म में थे ऋषि कपूर और साथ में थी मनीषा कोइराला, एंड उस फिल्म को भी बनाया था मनमोहन देसाई जी के बेटे केतन देसाई ने। जहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन थी तो 28th ऑफ जून था कि उनका बर्थडे आज है, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया कि उनका बर्थडे कल है, 29th जून को। तो बाली जी अपने प्रोग्राम में तफसील से उनका प्रोग्राम करेंगे ज़रूर, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए अब ये गाने मैंने क्यों किए हैं तो आप तक पहुँचा ही देती हूँ। केतन देसाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे, एंड उनके फादर भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। मनमोहन देसाई का नाम कौन नहीं जानता है, तो बाकी के गीत में जो है मनमोहन देसाई जी की फिल्मों के आप तक पहुंचाऊंगी। सो हम उन्हें एडवांस में ही आज बहुत बहुत बर्थडे की बधाई देते हैं। उन्होंने बनाई फिल्म कुली, मर्द, अल्लाह रखा, तूफान, अनमोल, दीवाना मस्ताना, एंड ये है जलवा। उम्मीद करती हूँ कि आप फर्स्ट आवर से ही मेरा साथ दे रहे हैं। अगर अभी अभी सुनना शुरू किया है तो आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों गीत ही नहीं बल्कि लास्ट आवर के भी सारे गाने आपने पसंद किए, एंजॉय किए। किसी ने इन गीतों के साथ डांस किया होगा, किसी ने इन गीतों के साथ साथ गाया होगा, किसी ने वैसे ही बैठे बैठे ज़रा मटक गए होंगे। चलिए, जो कुछ भी किया, अच्छे लगे आपको गीत, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जानकर। बहुत सारे मैसेजेस स्क्रीन पर हैं, अगर मैं नाम लेने लगी तो बस नाम ही लेती रह जाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी बराबर मुझे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, थैंक यू। इसी तरह से अपने मैसेजेस भेजते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आज आप पैसे भेजना चाहते हैं, योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 124 रुपीज एंड 25 पैसा, एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे वेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds, ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन यू आर सेंडिंग ओवर 2,000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: राइट, आज के मैचेस के बारे में मैं अर्लियर ऑन भी आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि आज रात को मैच होने वाला है, 8 बजे शुरू होगा साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच में, एंड आज ही मैच होना है अल्जीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। रात हो चुका है, ये 3-3 था इनका स्कोर, और जॉर्डन एंड अर्जेंटीना के बीच में मैच हुआ, एंड अर्जेंटीना 1-3, एंड साथ में कोलंबिया एंड पोर्चुगल में भी मैच हुआ, दोनों का स्कोर नील रहा। सो जैसे जैसे आगे मैचेस होते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ़ यू मैंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
3: सिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
5: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 g 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN।
3: बिग डील्स बिग सेविंग्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
6: वेलकम टू द जंगल।
3: फिल्म बिल्कुल फेक,
6: हमारे फिल्म आर्मी वाली,
7: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
6: और स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
8: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
9: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
10: किस लिए फिल्म में?
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click rifkotheatre.com for more info. And with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
14: Radio partner, Leica Radio.
15: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
16: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
17: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
18: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
19: जगदात्री,
18: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
19: माला ले आना। लाया जी।
18: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
20: टीम गेट रेडी फॉर द एक्शन।
18: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 बजे ZTV HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
21: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: फिल्म सच्चा झूठा से चुना था मैंने इस गीत को एंड मनमोहन देसाई साहब ने बनाया था इस फिल्म को. इफ़ यू डू रिमेम्बर इस फिल्म में कौन कौन थे, राजेश खन्ना, मुमताज एंड विनोद खन्ना. बहुत खूबसूरत फिल्म थी, भाई बहन के प्यार का भी इसमें बहुत अच्छा नाज थी शायद, आई थिंक सो, जो सिस्टर का जिन्होंने रोल किया था. बहुत खूबसूरत फिल्म थी. एंड मनमोहन देसाई वॉज नोन फॉर हिज फैमिली सेंट्रल फिल्में बनाते थे, एक्शन सॉन्ग एंड डांस फिल्म्स एंड विच केटर्ड द टेस्ट ऑफ इंडियन मासिस को अट्रैक्ट ज़्यादा करते थे. हिज मूवीज डिफाइंड अ न्यू जॉनरे कॉल्ड मसाला फिल्म्स एंड द कॉमन थीम इन हिज फिल्म्स वर द लॉस्ट एंड फाउंड plot where family members would be separated and then reunited. Then pehli film inhone banayi thi Janam Janam Ke Phere jisme Nirupa Roy and Mahipal the. Then Chaliya in 1960, Bluff Master bahut khoobsurat film thi wo bhi Shami Kapoor ke sath banayi, Badtameez banayi thi Shami Kapoor saab ke sath and Kismat with Biswajit and Babita. सच्चा झूठा, राजेश खन्ना एंड मुमताज, रामपुर का लक्ष्मण, ऐसी बहुत सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की थी. पर मैंने एक और चॉइस देनी है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ दो गीतों में से कि बदतमीज़ का मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत आप सुनना पसंद करेंगे, बदतमीज़ कहो या कहो जानवर ये वाला गीत, या फिर छलिया का गाना तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के. कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है मुझे ज़रूर बता दें. फिलहाल मैं आप तक पहुँचाने जा रही हूँ फिल्म रोटी से गाना, और रोटी का भी ये गीत बहुत खूब रहता है. इस फिल्म में भी मुमताज एंड राजेश खन्ना ने काम किया था, साथ में थे ओम प्रकाश, विजय अरोड़ा एंड निरूपा रॉय एज वेल. तो आइए सुनते हैं ये गाना एंड फिर क्रिकेट का हाल भी आपको बताएंगे. पर पहले जरा जल्दी से मुझे बता दें कौन सा गीत आपके दिल के ज्यादा करीब है, बदतमीज का गीत या छलिया का गीत. बदतमीज का टाइटल ट्रैक एंड छलिया का तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के. और आज के प्रोग्राम का अगला गीत मैं करने जा रही हूँ सुनीता एंड सतीश जी के नाम, जो टोरंटो से यहाँ लंदन आए हुए हैं. वेलकम. एंड साथ में हैं मिसेस अशोकता मल्होत्रा जो दिल्ली से यहाँ आई हैं, उनका भी स्वागत है. उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है.
0: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो.

किशोर दयान लता जी की आवाज से फ्रॉम द फिल्म रोटी मुमताज एंड राजेश खन्ना पे ये गाना पिक्चराइज हुआ था। सतीश जी आपको और सुनीता जी आपको बहुत पसंद आया ये गाना, ये जानकर मुझे बेहद

0: महेंद्र कपूर साहब की आवाज में गाया हुआ ये गीत हमने चुना था फ्रॉम द फिल्म किस्मत 1968 में आई थी. ये फिल्म भी प्रोड्यूस की थी कमल मेहरा साहब ने, लेकिन डायरेक्ट की थी मनमोहन देसाई ने. और ओपी नैयर साहब का म्यूजिक तो दूर से पहचाना जाता है.
1: ये है Leica Radio.
2: Packed for the trip? Gifts? Passport?
3: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
3: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com. T's and C's apply.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, एक गीत फ्रॉम द फिल्म मन, मन का टाइटल ट्रैक, बहुत खूबसूरत गीत था अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाजों में गाया हुआ गीत, 1999 की फिल्म थी, आमिर खान थे इस फिल्म में और मनीषा कोयराला। एंड दूसरा गीत लूट मार से चुना था, 1980 की फिल्म थी, आशा जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत, जब छाए मेरा जादू। भाई मेरा जादू नहीं, ये गीतों का जादू है जो छाया हुआ है आपके दिलो दिमाग पर, और आप मुझे हर गीत के बाद मैसेज लिखते हैं, वाह सरिता वी लव दिस सॉन्ग, इतनी दिन हो गए सुना नहीं था, थैंक यू एवर सो मच कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, शुरू से 4 बजे से लेकर अब तक मेरे साथ हैं, थैंक यू आप सभी का। बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी। हाँ अभी अभी मैसेज मुझे मिला है, सुखमिंदर फ्रॉम रेडिंग लिखती हैं कि मेरे पापा आए हैं इंडिया से अभी अभी, आप प्लीज उनको वेलकम कर दें। तो यस डेफिनेटली पखर सिंह जी आपका स्वागत करते हैं हम लंदन में, जितने दिन भी रहे आप खूब इंजॉय कीजिएगा। और अब प्रोग्राम के बाकी के गाने भी बहुत खूबसूरत हैं, इंजॉय करेंगे, लेकिन पहले कुछ और भी काम करने होते हैं ना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट अभी इस वक्त आपको अगर पैसे भेजने हैं SBI के जरिए तो £1 इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 124 rupees and 20 paisas। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी डे वेन यू सेंड ओवर £1,000। ऑल्सो अ 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: राइट आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका एंड कनाडा के बीच में मैच होने वाला है, रात 8 बजे शुरू होगा। एंड जॉर्डन एंड अर्जेंटीना 3-1 से अर्जेंटीना जीते हैं। एंड DR कांगो एंड उज्बेकिस्तान में DR कांगो 1-3 एंड कोलंबिया एंड पोर्चुगल में दोनों का स्कोर रहा नील। सो अगर आप रैक लॉ से कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ़ यू मेंशन लाइक।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
3: लिस्टर इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
6: This July, witness the rise of a new force.
5: Hi boys.
3: What's up?
6: Yash Raj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
5: Jisse tumse baat karni hai, rok lo.
6: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal. Don't miss India's biggest female-led action event. Alpha, in cinemas from the 3rd of July.
7: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting, dizzy twist.
8: Coming to the Belgrade Theatre Coventry
7: the 16th to the 19th of July. Click riffcotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family. Radio partner, Leica Radio.
8: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
9: No more worries for me or you.
10: Southall Travel, at all protected.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold. It's spicy. It's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street. CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
14: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
15: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7, and with your favourite presenters live? Get the tune-in details at LeicaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में गाया हुआ ये गीत मैंने जिगरी दोस्त फिल्म से चुना था। जिगरी दोस्त डायरेक्टेड बाय रवि कांत नगरीचा एंड इस फिल्म में काम किया था जितेंद्र जी ने, साथ में थी मुमताज एंड पूनम सिन्हा। बहुत खूबसूरत फिल्म एंड इसके गाने बड़े अच्छे थे एंड उन्हीं में से मैंने चुना इस गीत को। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का था संगीत। आर्टिस्ट ऑफ द वीक जितेंद्र जी की आज मैंने इस गीत को जगह दी अपने प्रोग्राम में।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: भाई प्रोग्राम में ये गीत शामिल हुआ सतीश जी आपकी फरमाइश पर. थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इट.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: बहुत सारी फरमाइशें हैं, देखते हैं किस किस की फरमाइश पूरा कर पाते हैं.
1: ये है लाइका रेडियो.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice with a range of grains and flavors from around the world.

0: क्लासिक हिट गाना जुगनू फिल्म से चुना था, 1973 की फिल्म हेमा मालिनी एंड धर्म जी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल।
0: South Old Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call South Old Travel for the most competitive Dubai deals on 0208.

भाई मुझे तो कोई नहीं रोक रहा है, मैं तो जाऊंगी ही है और जाना भी है। मेरे जाने का वक्त है और सैंडी जी के आने का वक्त है। सैंडी विंटेज गोल्ड के साथ आपका मनोरंजन करेंगे हेयर ऑन लाइका गोल्ड, और उसके बाद रात को आप 10 बजे के बाद सुन पाएंगे गोल्ड नाइट्स। एंड मैनचेस्टर में जैजी जे विल बी टेकिंग ओवर, उनका साथ दीजिएगा। और लाइका रेडियो पर नेक्स्ट आ रही है मैसा, उनका भी साथ दीजिएगा। मेरी आज की मुलाकात यहीं ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं विशाल ददलानी जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी। काश कि उन्होंने 90s में भी बहुत सारे गीत बनाए होते तो मैं ज़रूर एक गीत उनका शामिल करती। विशाल ददलानी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर एंड ऑल्सो वेरी गुड सिंगर एज वेल। सो उनको भी बधाई देती हूँ। अगर आपका बर्थडे या शादी की सालगिरह, कोई ख़ास मौका है, आज खास स्पेशल डे है आपके लिए, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। अगले वीकेंड आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और इसी तरह से लाइका के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए सुपर्ब इवनिंग, बाय। ये है लाइका रेडियो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

कौन अपने बचपन में वापस जाना नहीं चाहता, हम सब जाना चाहते हैं ना. एंड दिस सॉन्ग इज जस्ट सो सो यू नो, इट टेक्स यू बैक इन टाइम. गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन.

0: एब्सोल्युटली राइट. प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है. प्यार मोहब्बत जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं, और जिसके दिलों में प्यार है आराम से आप अपनी लाइफ बिता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. द वर्ल्ड इज रियली वेरी ब्यूटिफुल, ट्रस्ट मी. दैट ब्यूटिफुल ट्रैक इज फ्रॉम द मूवी राम तेरी गंगा मैली, 1985 की रिलीज, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म विद सम ग्रेट म्यूजिक कंपोज बाय रविंद्र जैन.
1: Like our radio.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: And yes, Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. So, Dubai is calling you guys. You can call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. It's all ATOL protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: Yeh hai Laika Radio. Laika.

0: Radio.
1: You're tuned in to the Sunday Wrap with me, Mesa, on Leica Radio, 1458 AM across Greater London, DAB Digital Radio in the Midlands, Alexa, Google Home, Leica Radio website or Leica Radio mobile app पर आप मुझे सुनते हैं. शो को स्पॉन्सर किया है tickets2india.co.uk ने. It's a travel website and some one of the most affordable travel websites, I must say, with some great offers on flights to India and other destinations as well. बहुत बहुत शुक्रिया for all your lovely, lovely messages coming through to our studio WhatsApp number. It's great to know that you guys love us. And, you know, आप जब हमारे game shows में भी part लेते हैं, बड़ा ही मजा आता है. It makes it all worth it, you know, preparing for these games. मैं बहुत बार सोचती हूँ कि आज मैं ये challenge करूँगी, कितना, you know, challenging इसको बनाऊँगी. लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ और आपका Bollywood के लिए craze देखती हूँ, and, you know, all those participations is just amazing. It makes all the mehnat, the free work worth it. Thank you so much for all your love, guys. जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप हैं तो हम हैं. So thanks for all the love that you have given to the Leica Radio Network, and we've gotten bigger and better. सिर्फ आपके love और support की वजह से. इस घंटे में भी lots of beautiful tracks coming your way, including the Leica chart topper, a Pakistani hit of the hour, an indie pop hit, which of course every time is a beautiful ghazal in the last hour of the show. And of course, another fun game called Catch Me If You Can.
0: Catch Me If You Can with Mesa.
2: Leica Radio.
1: Catch Me If You Can is another game that I play with you in the show, and that's always in the last hour of the show. जिसमें मैं आपकी बॉलीवुड लिरिकल नॉलेज टेस्ट करती हूँ. मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने फिल्मों के गानों को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, याद रखते हैं उसकी लिरिक्स. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस द इनकरेक्ट सॉन्ग आउट ऑफ द थ्री सॉन्ग्स दैट आई एम गोइंग टू स्पीक आउट टुडे. तो पहला गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा फ्रॉम कयामत से कयामत तक. दूसरा गाना है, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली फ्रॉम मैं खिलाड़ी तू अनारी. और तीसरा गाना है, मेरा दिल भी कितना घायल है ये प्यार जो तुमसे करता है फ्रॉम साजन. अब किसी एक गाने में मैंने की है लिरिक्स की गड़बड़ और आपको पहचानना है वो कौन सा गाना है. पहला गाना वापस बता देती हूँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा फ्रॉम कयामत से कयामत तक. दूसरा गाना है, चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली मैं खिलाड़ी तू अनारी से. एंड लास्ट गाना है, मेरा दिल भी कितना घायल है ये प्यार तो तुमसे करता है फ्रॉम साजन. अपने जवाब आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं.
0: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719.
3: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द Star Tours Experience. Visit startours.co.uk.
1: Another beautiful track coming up to soothe your weekend. Even more beautiful track in the voice of the one and only Arijit Singh.

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रैवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
1: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है। ओ मूवी जिन्हें सबनु

0: to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
2: दिल तो टूट पे किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
0: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: ये है
1: लाइका रेडियो
2: सी टीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9-12 July इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम
3: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट
2: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Punjab the biggest tunes. No.